अमरित नमस्तु नमस्य ओम अमरित नमस्तु नमस्य ओम स्वस्त्यस्तु मुक्तिरा आयुण कारी मोचु परिशा कुमातम सकुम गाउलो नायोपो अम्बोनु संदोनु बेवा सोको गुरु तक आतिक पुण कारी मोचु पाई आतुरान पेंशु